इस गीत दे विच एक मुटियार अपने घर वाले दी हसबैंड दी मेहनत करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेला लग्या होया मैनू तू कल्ली नू घर छड्ड के क्यों जा रहा, मैनू भी उत्थे लैके जा। पर जदों मेले च पहुँच जांदे आ, इह तों अगली गल की हुंदी है, मेले च पहुँच के की हुंदा